You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ऑलिव,
3: आवे नंबर वन। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: We are the sounds of the streets.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: हाय, मैं हूँ सारिका।
3: मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
6: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट। रेडियो

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Here we go again.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song.

0: उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Olive
5: Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडो ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है, जहाँ लाइफ को हम रश में नहीं बल्कि थोड़ा पॉज करके देखते हैं. सो बेसिकली आज सैटरडे है, कल फ्राइडे को सब ने बहुत इंजॉय किया है. यस्टरडे आई वॉज देयर और हम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे टेकटॉक में. इवनिंग में कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं, और उन प्लान्स के अलावा यहाँ पर आई हैव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो मुझे आपको बताने हैं कि भाई वीकेंड का नाम सुनते ही क्या लोगों के मन में आता है. प्लान्स, आउटिंग, शॉपिंग, पूरा स्केड्यूल मतलब हम अपने मन में बना लेते हैं. कल मैंने बहुत सारे लोगों से बात की. समबडी वॉज सेइंग कि यार कोई प्लान नहीं है, प्लान तो एकदम सडन बनते हैं. फ्रेंड्स के साथ बैठना, बस ऐसे ही थोड़ा सा चाय पीने चले जाना, और यही एक्चुअली बेस्ट प्लान्स होते हैं. फिर सम वीकेंड्स आर नॉट अबाउट प्लान्स, दे आर अबाउट जस्ट पॉज. और कभी कभी बेस्ट वीकेंड वो होता है जिसमें आप कुछ स्पेशल नहीं करते, बस लेट उठते हो, अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी पीते हो और थोड़ा सा स्लो हो जाते हो. जैसे कि मैं हर वीकेंड में मेरा यही होता है, क्योंकि एक्चुअली आपकी बॉडी सिर्फ काम से नहीं रेस्ट से भी रिचार्ज होती है. और हम इतने बिजी हो गए हैं कि रेस्ट को भी प्लान करना पड़ता है कि इस वीकेंड हाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे. लेकिन रियल रेस्ट तब होता है जब आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे होते हो. वीकेंड प्रोडक्टिविटी का नहीं बल्कि रिकवरी का टाइम होता है, विच इज़ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर माइंड, योर बॉडी. सो आई विल से कि अभी सैटरडे बाकी है और इसको और अच्छे से प्लान करने के लिए मुस्कान है आपके साथ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: भाई इस किताब के बारे में मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ा था. यस्टरडे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग और मैं कुछ नई किताबें ढूंढ रही थी आपको बताने के लिए, आपसे यू नो बात करने के लिए. तब मुझे एक किताब दिखी विच इज़ फ्रॉम 1987, नॉर्वेजियन वुड. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. So, 1987 की ये नॉवल जो है वो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई थी. और ये टिपिकल स्टोरी नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है. स्टोरी है तोरू नाम के एक लड़की की जो अपने पास्ट और रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है. इस बुक का टोन क्या है, बहुत ही क्वाइट, नॉस्टैल्जिक और डीपली इमोशनल. ये बुक बिल्कुल भी आपको लाउड फील नहीं कराएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत ही लाउड ऐसा एक्सपीरियंस पढ़ा है, लेकिन आपको अंदर तक थोड़ा सा टच जरूर करेगी. इसमें लोनलीनेस है, प्यार है, नुकसान है और सब कुछ वो जो आप पढ़ना चाहते हो रियल लाइफ में देखे हैं आपने, लेकिन बहुत सटल तरीके से. मतलब बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं, जिसे कहते हैं ना, वैसा है इस किताब में. सब कुछ बहुत सटल तरीके से होगा और शायद इसीलिए बुक इतनी रिलेटेबल हुई और 1987 की बेस्ट सेलर बन गई. कभी कभी लाइफ में यही चाहिए होता है यार, स्लो और साइलेंट चीज़ें. सो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा प्यार, नुकसान, अकेलापन ये सब रहा है ना, तो आप इस किताब से बहुत रिलेट करोगे. सो आई विल से कि ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बात करना है. और आप फुटबॉल फैंस के लिए आई हैव समथिंग.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

भाई फुटबॉल फैंस, ये मोमेंट आपके लिए है। अमीर क्लब फाइनल 2026 के टिकट्स जो है वो आज से लाइव हो रहे हैं 1 बजे से ऑफिशियल वेबसाइट पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो टिकट का जो प्राइस है वो आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कम है, एक्सेसिबल है, कोई भी खरीद सकता है। 50 रियाल, 30 रियाल, 10 रियाल अकॉर्डिंग टू सीट्स ही होने वाला है। और मैच जो है वो 9 मई को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। सो फुटबॉल ना सिर्फ एक गेम नहीं है, कतर के लोगों के लिए एक इमोशन जैसा है। और इस बार सिर्फ मैच नहीं, पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है। फैन जोन, एंटरटेनमेंट, लाइव प्राइस, सब कुछ होता है वहां पे। मैच शुरू होने से पहले ही सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने वो स्टेडियम का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है, देन यू शुड मतलब वॉच दिस टाइम। और अपने बच्चों को तो जरूर लेकर जाना चाहिए, अगर आपके पास बच्चे हैं या आपके आसपास कोई बच्चे हैं और आपको लगता है कि यार ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, वी हैव लॉट मोर जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: भाई कतर के वाटर के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम फ्लो में आ गया है. आज से मैरीटाइम एक्टिविटीज़ फुल रिज्यूम हो चुकी हैं, मतलब शिप्स, बोट्स, वेसल्स सब कुछ, और फुल डे ऑपरेट कर सकते हैं. सो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फुली ख़त्म हो गए हैं और मूवमेंट एकदम फ्री हो गया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है. लेकिन साथ ही एक रिमाइंडर भी दिया गया है, सेफ्टी फर्स्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती ही है. सो आपको दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा. एंड इसी के साथ आई विल से कि भाई कतर में अब वेदर तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन इसी के साथ नई नई चीज़ें भी आ रही हैं. जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि भाई फुटबॉल मैच जो है वो 9 मई को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है. सो टिकट्स ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत ही यू नो एक्सेसिबल टिकट्स हैं. सो आई विल से कि अगर अभी तक आपने ये लाइव मैच का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं किया है, देन यू कैन यू नो चेक आउट. इसी के साथ मैं हूँ यहाँ पर मुस्कान विद द सुपर हिट गाने. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना.

सो वीकेंड का एक सिंपल सा रूल है कि काम कम और स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और ऑनेस्टली आजकल वीकेंड का सबसे पॉपुलर प्लान है क्या देखना है। मतलब मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे भी फोन बस तभी चलाऊं या तो मुझे फोन पे बात करनी है या फिर मुझे कुछ मूवी देखनी है, ठीक है। बाकी जो ये फालतू की स्क्रॉलिंग है इस पे मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। और इस वीकेंड एक इंटरेस्टिंग बस है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो, यानी कि आज नया सीजन स्टार्ट हो रहा है और इस बार गेस्ट भी काफी फन है। मतलब कपिल शर्मा का फॉर्मेट ही ऐसा है, लाइट, इजी, नो थिंकिंग, जस्ट लाफ्टर, ठीक है। और कभी कभी हमें वही चाहिए होता है जो दिमाग को बहुत अच्छा ब्रेक दे दे, क्योंकि पूरे टाइम मीटिंग्स, डेडलाइंस, स्ट्रेस, नए आइडियाज, सब कुछ करना पड़ता है और इन बिटवीन अगर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि लोग अब कंटेंट को फिनिश करने के लिए नहीं देखते, फील के लिए देखते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा रह भी जाए तो कल देख लेंगे टाइप हो जाता है। तो आज अगर OTT खोल रहे हो तो बस ये याद रखो कि परफेक्ट शो नहीं, परफेक्ट मूड इंपॉर्टेंट है। आप वो देखो जो आपका मन कर रहा है। बाय द वे कपिल शर्मा का नया सीजन आने वाला है नेटफ्लिक्स पे, तो मैं वो देखने वाली हूँ आज। और मुझे ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा कुछ देख लो, काफी है, एक दो घंटे, जरूरी नहीं है कि बिंज वॉच करना है, 8-10 घंटे देखना है। मैं पहले वो सब कर चुकी हूँ, पर अभी ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि बिंज वॉच भी करके देख लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बॉस। मतलब थोड़ा थोड़ा देखो, एक दो घंटे जितना आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से ठीक है। फॉर नाउ आई विल से कि थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक और बात करेंगे कि भाई अगर वर्कआउट आप नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि बाहर अब हीट बहुत ज्यादा हो गई है और आपको आउटडोर वर्कआउट पसंद था, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो भाई फिटनेस का क्रेज तो दिन पर दिन लोगों को बढ़ रहा है, पर उसी के साथ गर्मी भी उतनी फास्ट बढ़ रही है। कतर में टेम्परेचर ऑलरेडी राइज कर रहा है और ऐसे में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप आउटडोर वर्कआउट सेफ तरीके से कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि यार बहुत गर्मी है और ये तो मतलब और ज़्यादा टायरिंग हो जा रहा है। सो ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग हीट रिलेटेड इलनेस जो है वो स्पेशली डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन की वजह से काफ़ी इंक्रीज होती है और हाई टेम्परेचर रीजन्स में जैसे कि हमारे कतर में ये गर्मी की वजह से और ज्यादा हमें बीमार कर सकता है। सो आई विल से कि अगर आपको गर्मी को अंडरएस्टिमेट करना है तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप अपने रूम में वर्कआउट कीजिए या फिर इंडोर वर्कआउट के प्लान्स बनाइए। भाई कतर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इंडोर वर्कआउट आप कर सकते हो, जिम्स तो है ही पर उसके अलावा स्विमिंग, उसके अलावा वॉक के लिए बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जहां पर आप जो एसी पार्क्स हैं या फिर जिनमें आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो। सो आपको अपने घर के आसपास वैसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, बट अभी के लिए आई विल से कि मेरे पास भी कुछ ऐसे और तरीके हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

आज जो टक्कर होने वाली है वो होगी संजू सैमसन और बुमराह के बीच में. मतलब या तो संजू सैमसन जो है वो शतक लगाएंगे या फिर बुमराह जो है वो मुंबई को जिताएंगे. बिकॉज मैच होने वाला है चेन्नई वर्सेस मुंबई के बीच में. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. भाई इतना इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि कल भी मैच बड़ा अच्छा था. दिल्ली वर्सेस राजस्थान का मैच था. इट वॉज टूर्नामेंट का 43rd मैच. इतने आराम से मैचेस निकल रहे पता ही नहीं चलता कि भाई चल क्या रहा है. सो यस्टरडे अगर मैं बात करूँ दिल्ली और राजस्थान की तो बड़ा अच्छा मैच था. आखिरी ओवर तक जो मैच था उसको दिल्ली ने 7 विकेट से जीता और पूरी हिस्ट्री का अपना सबसे बड़ा रन चेज किया दिल्ली ने. सो आपको तो पता ही है कि कल के जो रन थे वो काफ़ी अच्छे बने. इट वॉज लाइक 226 रन बनाए दिल्ली ने 19 ओवर एक बॉल में 3 विकेट के नुकसान पे. और राजस्थान का था 225 रन 6 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में उन्होंने बना लिए थे. सो ऐसे करके सबसे बड़ा रन तो हो ही गया. पर अभी इसी के साथ और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कल बने हैं और आज भी बनेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

तो अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो चेन्नई अब तक 8 मैच खेला है, उसमें से 3 उसने जीत लिए हैं, जबकि 5 में हारा है ऑफ कोर्स। सो इस तरह से टीम के पास 6 पॉइंट्स हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ की टीम को भी अभी 6 मैच और खेलने हैं, ऐसे में उसे प्लेऑफ में एंटर करने के लिए बाकी के सभी मैचेस जो है वो जीतने पड़ेंगे, और एक भी मैच हारने के सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा कि वो बाकी टीम्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। यू आर लिस्निंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो आज का मैच बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। अब अगर मुंबई की बात करूँ तो मुंबई की जो कंडीशन है चेन्नई से खराब है। हार्दिक पांड्या की टीम 8 में से 2 मैचेस जीती है और टीम के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मुंबई के पास प्लेऑफ में एंटर करने का जो मौका होगा इसके लिए उसे अपने सभी मैचेस जीतने पड़ेंगे, एक भी मैच हारने के कंडीशन में टीम की प्लेऑफ की जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अब टॉप प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बताएं केएल राहुल ने मैच में 75 रन बनाए थे और पारी खेली थी, और इस पारी में के सहारे एक्चुअली इस पूरे टूर्नामेंट के सीजन के टॉप स्कोरर की लिस्ट में पहले नंबर पर वो आ गए। उनके नाम जो है वो 9 मैचेस में 433 रन्स हो गए हैं और 4 रन पर आउट होने के बाद राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी जो है 404 रन के साथ टॉप 3 से बाहर हो गए। अब वी विल टॉक अबाउट दैट, केएल राहुल हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए या फिर हैनरिक क्लासन हो गए, ये सब ना ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड पर हैं, पर आज के मैच में क्या होने वाला है ये तो शाम को ही पता चलेगा। सो फॉर नाउ आई विल से कि आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट टीम और प्लेयर कौन से हैं। 3311063 पर यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

यार आजकल एक चीज मैंने देखी है कि फोन बजता है, स्क्रीन पर अननोन नंबर आता है और हम क्या करते हैं, इग्नोर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। पहले ऐसा नहीं था यार, अननोन नंबर क्यूरियोसिटी लेकर आता था, अब अननोन नंबर जो है वो हमें बहुत सस्पिशियस लगने लगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, स्कैम अटेम्प्ट होते हैं और ट्रस्ट जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में स्लोली डिक्रीज हो रहा है। और ये सिर्फ हैबिट नहीं है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल मेरे पास कुछ एक दो कॉल्स आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे उठाना चाहिए कि नहीं, मैंने उठाया ही नहीं उस कॉल को। और फिर मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा या कोई नोन होगा तो भाई मेरे को मैसेज कर देगा ना, पर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि भाई क्यों कॉल बैक करना है। सो कन्वीनियंस के साथ अब कॉशन भी आ गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिहेवियर ग्लोबल हो चुका है, मतलब हर कोई ऐसा करता है कि आप अगर अननोन नंबर से कॉल करोगे तो वो नहीं उठाएगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना तो आप ट्राई करके देख लो किसी अननोन नंबर से अपने किसी दोस्त को कॉल करके। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM और आप मुझे बताओ कि आपके पास जब किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो क्या आप उसे उठाते हो? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: तो पता है मूवी किंग की शूटिंग चल रही है जिसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण हैं और कल उसकी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सो शाहरुख खान और दीपिका दोनों ही बहुत कूल नजर आ रहे थे। दीपिका ने एक फ्लोरल प्रिंट का गाउन पहना हुआ था और सेट पर वो टहलती हुई नजर आ रही थी और शाहरुख खान ना प्रिंटेड शर्ट पहने हुए थे ऐसे लाइनिंग वाला और उनके बटन्स जो हैं वो काफ़ी खुले हुए थे एंड बैकग्राउंड में देख कर लग रहा था कि गाने की शूटिंग चल रही है। सो आई विल से कि भाई दीपिका पादुकोण ने थोड़े दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर ये बताया कि शी इज प्रेग्नेंट और इसी के साथ वो इतना काम भी कर रही हैं तो मुझे लगा भाई गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। अब आप सोचिए मतलब रियल लाइफ में जब मैं देखती हूँ तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है, उनको लगता है कि नहीं यार हेल्थ इज नॉट गुड, वर्कआउट नहीं हो पा रहा है या बहुत सारी ऐसी चीजें, अच्छा फूड जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इवन प्रोटीन आजकल जो आया हुआ है ट्रेंड में कि सबको प्रोटीन चाहिए बट प्रोटीन कोई अपने खाने में पूरी तरीके से ले नहीं पा रहा। सो ये सब चीज़ें सुनने के बाद जब मैंने कल दीपिका पादुकोण की पिक्चर्स देखी तो आई वाज लाइक वंडरिंग कि भाई ये लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ें। बाय द वे ये तो दीपिका पादुकोण से ही पूछना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करती है वो अपने इतने स्केड्यूल्स को और इतने टाइट स्केड्यूल्स को। बट इन बिटवीन मुझे ऐसा लगता है कि इस आने वाले गाने का इंतजार और नहीं करना चाहिए, ये आप इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, मैं थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

टाइम था इंस्टाग्राम पर जब इन्फ्लुएंसर्स बोलते थे कि बाय दिस बाय दैट और मतलब हर चीज के लिए वो बता रहे होते थे, बट अभी ना ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि डोंट बाय दिस। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। इसको बोलते हैं डी इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड, मतलब लोग ओवर कंजम्पशन से थक चुके हैं, अननेसेसरी शॉपिंग, इंपल्सिव बाइंग जिसे कहते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब इन्फ्लुएंसर्स जो है वो ऑनेस्टली बता रहे हैं कि ये वर्थ है ही नहीं, ये स्किप कर दो, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ही शायद कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना यू नो ट्रस्ट है वो बना पा रहे हैं। मैंने कुछ बाहर के इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, लाइक दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और वो आपको अलग अलग गैजेट्स ट्राई करके बताते हैं जो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हो रहे होते हैं। सो वो गैजेट्स खुद लेकर आते हैं और उसको बताते हैं कि ये वर्थ द मनी है या फिर वेस्ट द मनी है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें करके ही इन्फ्लुएंसर्स सबसे ज़्यादा नाम कमाते हैं, क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा इतने ज़्यादा गैजेट्स, इतने ज़्यादा टूल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, हर चीज़, मतलब ऐसे हर कोई दिखा रहा होता है। पर आज के टाइम पे ये ट्रेंड ना थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है और लोग आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि क्या वर्थ है और क्या नहीं है, और कुछ चीज़ें तो आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करके लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ का रिव्यू जो है बहुत ही आराम से आपको मिल जाता है। सो आज के टाइम पे जब भी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ ना, चाहे वो खाने की चीज़ क्यों ना हो, अगर कोई मुझे कह दे कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, यू कैन यू नो बाय दिस, तब भी मैं नहीं खरीदती, मैं उसे पूरा पढ़ती हूँ, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि भाई ये मेरे लिए ठीक होगा या नहीं, उसके बाद ही मैं उसे खरीदती हूँ। डजंट मैटर कि मेरे पास पैसे हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए या नहीं है, पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ आपने वर्थ बाइंग किया है या फिर अपने पैसे जो है वो वेस्ट नहीं किए हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी कोई कुछ लेने के लिए कहे तो सबसे पहले क्या करना है, रिसर्च। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: मैं जब भी कोई फूड रील देखती हूँ या जब भी किसी से खाने के बारे में बात करती हूँ तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. भाई जिम हो, डाइट हो, रील्स हो, हर जगह प्रोटीन का डिस्कशन चल रहा होता है. लेकिन सवाल ये है कि ये जरूरत है या सिर्फ ट्रेंड की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं. तो रियलिटी क्या है आपको बताती हूँ. भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स की रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट. बट ओवर फोकस भी मतलब प्रॉब्लम बन जाता है भाई. मतलब जो आप खा रहे हो दिन भर में, अगर कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन कर रहा है जिसमें प्रोटीन नहीं है, जो शाम को आपको स्नैक की तरह खाने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं यार, वंस इन अ वाइल इज टोटली फाइन. मतलब हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है. बाय द वे मेरे जाने का टाइम हो गया और ये सैटरडे जो है दोपहर तक पहुंच चुका है. सो आई विल से कि अब बस थोड़ा सा ही टाइम है. अगर आपका हाफ डे वर्किंग है सैटरडे तो अब आप ऑलमोस्ट फ्री हो और शाम को कुछ अच्छा प्लान करो. अगर आप यू नो पूरे दिन की छुट्टी पर हो और आपको लग रहा है कि यार अभी शाम बाकी है तो इसे अच्छे से इन्जॉय करना है, तो येस उसे अच्छे से इन्जॉय कीजिए. कल से फिर से वही मीटिंग्स, फिर से वही टारगेट्स और फिर से वही सारी चीज़ें जो आप थर्सडे की शाम को छोड़कर आए थे उन्हीं सबसे मिलना है. सो आज का दिन अच्छे से इन्जॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: Radio Olive Pie.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: You got to
1: Radio Olive 106.3 Radio Olive Geo Bindas.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।
4: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा है, किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा। आज दिन चढ़िया

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में गुस्ताख इश्क से सुंदर गाना और अब तो धूप भी काफी तगड़ी निकलने लग गई है। You're listening to Radio Olive 106.3 FM। तनिषा आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और मैंने वीकेंड पे क्या किया? So मैंने थर्सडे शाम को देखी Devil Wears Prada 2। Absolutely loved it because I'm a fan of the first wala movie, you know, the iconic Miranda Priestly, Anne Hathaway, Andy Sachs, Emily Blunt ka jo character tha, absolutely amazing. और वो लेगेसी को इस मूवी में भी कंटिन्यू किया गया है एंड यू नो वो जो आइकॉनिक तरीका था वो कैरेक्टर्स का वो भी इसमें बरकरार है। स्टोरी लाइन ऑब्वियसली वीक थी पर उस पर किसी ने फोकस नहीं किया बिकॉज वी आर सो इन लव विद द कैरेक्टर्स। दो मिरांडा को काफ़ी टेम करने की कोशिश की गई बिकॉज ऑफ द यू नो ऑल दीज न्यू ट्रेंड्स जेंजी लिंगो बींग सो ओवर ऑफेंसिव ओवर एवरी लिटिल थिंग, वो सब चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा गया है मूवी में and because I'm a fan I loved it but if you're not a fan of the first one and aap sochoge ki bahut hype ho raha hai to dekh kar aao disappoint ho jaoge so don't go I would say jab OTT pe aayegi tab dekhna lekin agar first ke fan the to second dekhna theater mein banta hai meri jaan। Yes, sending cool song of the hour for you, stay tuned and Andrea Bindas awesome radio Olive par aane wala gana cool song of the hour।
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song।

0: तनिषा
1: तनिषा शंकर महादेवन की आवाज में दिल चाहता है फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल एवरी रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड यस्टरडे वाज दिल्ली और राजस्थान का मैच जो कि राजस्थान में ही हुआ था और राजस्थान वन द टॉस उन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम बैट करेंगे और उन्होंने टारगेट दिया 226 रन्स का एंड काफ़ी आसानी से दिल्ली ने वो पूरा कर दिया और जीत गए 7 विकेट से। जी हाँ, केएल राहुल बने थे प्लेयर ऑफ द मैच दिल्ली से और बढ़िया रहा, सही था। दोज हुवर निराश कि यार हमारी टीम राजस्थान नहीं जीती, कोई बात नहीं मेरी जान, इट्स जस्ट अ गेम, कोई ना कोई तो हारेगा ही, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। प्रेजेंटेड बाय बीकानेर वाला, पानी पूरी से लेके छोले भटूरे तक हर बाइट में टेस्ट की सेंचुरी, बीकानेर वाला अलमतार अल कदीम एंड सिटी सेंटर। आज कौन सा मैच होने वाला है, कौन सी टीम के बीच कहां, वो सब बात करेंगे कुछ देर में। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो विंदास।

0: You're listening to Radio Ola 106.3 FM तनीषा आपके साथ अरिजीत सिंह की आवाज में ब्रह्मास्त्र से केसरिया सुना आपने और अमेरिका फाइनल 2026 की जो टिकट्स हैं वो लाइव हो चुके हैं www.qfa.qa पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 9th मई को होने वाला है इसका फाइनल 5:30 PM से खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये 54th एडिशन है अमीर कप का एंड द कैटेगरीज आर कैटेगरी 1 इज 50 रियाल, कैटेगरी 2 30, कैटेगरी 3 10 रियाल एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए 10 रियाल जी। सो फैंस कैन परचेज अप टू 6 टिकट्स एक बार में, एक इंसान खरीद सकता है एंड टिकट्स आपको मिलेंगी रोड टू कतार ऐप पे 7th मई को। और जो एक्सेसिबिलिटी टिकट्स है दैट कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम accessibility.tickets@sc.qa। और इस साल जो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है वो भी अपने 50 इयर्स पूरे कर रहे हैं एंड देयर विल बी फैन जोन्स आल्सो, तो अगर उन सब का लुत्फ उठाना चाहते हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, तो थोड़ा जल्दी पहुंचिएगा स्टेडियम और एंजॉय कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चेकआउट कीजिए और फटाफट से खरीद लीजिए टिकट और सुनते रहिए रेडियो ओला। जियो बिंदास
1: रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
3: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा. चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट. सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. Aur bahut sari videos dekhungi abhi social media pe jo bahut rotate ho rahi hai. Dugong Adventure World ki, which is an outdoor theme park event, aur 900 park mein ye ho raha hai. Yahan pe bahut sari amazing rides hain, live shows ho rahe hain, performances hain, mascots hain, interactive activities hain. बड़ों से लेकर बच्चों तक सब के लिए इट इज फुल फैमिली फ्रेंडली. और यू नो आप वहाँ पे फूड कियोस्क मिलेंगे तो खाना भी बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे इवेंट बूथ्स हैं, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, फुल लॉन, मज़ेदार ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है. तो ज़रूर चेकआउट कीजिए. वीकेंड भी आ गया है तो देरी किस बात की. 9 मई तक ये चलने वाला है और वीकडेज का टाइम संडे टू वेंसडे का रहेगा 4 PM से लेकर 10 PM. और वीकेंड्स पे दैट इज आज से लेकर सैटरडे तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक. अगर आपको इसकी टिकट्स चाहिए तो फटाफट से जाइए स्नूनू एस सिटी पर, वहां पर इसकी टिकट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं. अलोंग विद दैट यू शुड गो ऑन आर सोशल मीडिया radioolive.qa, क्योंकि वहां पर चल रहा है कॉन्टेस्ट जहां आप जीत सकते हैं डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड के टिकट्स. यस, गो एंड चेक इट आउट और सुनते रहिए रेडियो ओलिव. जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

Danisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और मैंने कल एक बहुत सुंदर quote पढ़ा था, which says, "Nothing drains your brain more than your own thoughts," and that is so true. We keep replaying the conversations, you know. कि यार उसने ऐसा क्यों बोला, यार मैं ये भी बोल सकती थी, यार मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया. वी कीप डूइंग दैट विद आर हेड और उसको कॉन्स्टेंटली बिजी रखते हैं और फिर बोलते हैं कि बहुत मेंटल फटीग हो रहा है. हो गई ना, फिजूल की चीज़ों पर इतना सोच सोच के खुद को इतना बॉदर कर रहे हो, मत करो. यू डिड इनफ टूडे, यू आर इनफ एंड दैट इज ओके. लेट योर ब्रेन रेस्ट अ बिट. उसमें हमेशा 50 टैब खोल के रखने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ डू दैट, सो आई कैन एब्सोल्यूटली रिलेट टू यू इफ यू हैव बीन डूइंग दैट टू. एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट आउट ऑफ दैट, बट कोशिश तो करनी पड़ेगी हमारे खुद के लिए मेरी जान. ठीक है, try that, closing all the tabs one by one, and keep listening to Radio Olive, Trio Bindaz.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

0: Tanisha.
1: देव नेगी और जोनिता गांधी की आवाज में बंकर्स फ्रॉम द मूवी बागी 3 ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और आज होने वाला है मुंबई और चेन्नई का मैच शाम 5 बजे और टॉस वगैरह की तैयारी शुरू हो चुकी है. बाकी कहा जा रहा है कि ये टीम्स दोनों के पास 5-5 विनिंग टाइटल्स हैं सो फार T20 के, लेकिन इस साल के T20 में दोनों ही उसको मैच नहीं कर पा रही हैं. काफ़ी मुश्किल हो गया है. मुंबई जो है सिर्फ 2 मैचेस जीती है अभी तक के उनके 8 मैचेस में से. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. लेट्स सी आज कौन सी टीम बाजी मार जाती है. आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं बताइए 3311106 पर मैसेज करके.
2: प्रेजेंटेड बाय बीकानेर वाला पानी पूरी से लेके छोले भटूरे तक हर बाइट में टेस्ट की सेंचुरी. बीकानेर वाला अलमतार अल कदीम एंड सिटी सेंटर
1: और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: Tanisha. Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. And यार life ना काफी ऐसे hustle वाली हो गई है. Relax करने का बहुत कम time मिलता है. And there are so many things in our day to day life जो कि हमें काफी anxious कर देती है. है ना, फिजूल का स्ट्रेस लेने की वैसे भी हमें आदत है, वो एंग्जाइटी में और ऐड कर देता है. तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि कतर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप जाते हैं व्हेनेवर यू फील एंग्शियस अपने आप को काम करने के लिए, यू नो, थोड़ा सा ऐसे अपने सारे चक्रास को अलाइन करने के लिए. व्हाट इज दैट वन प्लेस विच गिव्स यू काम व्हेन यू आर एंग्शियस हियर इन दोहा? शेयर कीजिए मुझसे वो जगह 3311063 पर. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: कूल सॉन्ग.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव
1: रिचार्ज इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम ड्रीम बिगर

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड मैंने पूछा था कि कौन सी चीज है जो आपको काम करती है व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंग्शियस हियर. तो कुछ मैसेजेस आए मुझे. आकृति का मैसेज आया, कहती है मुझे दोहा का आसमान बहुत पसंद है. तो जहाँ भी मैं हूँ, से ऑफिस में हूँ एंड किसी चीज़ से एंग्शियस हूँ, मैं फटाफट से ऑफिस से बाहर निकलती हूँ, नीचे जाती हूँ और आसमान की तरफ 5 मिनट देखती रहती हूँ, लॉस्ट इन माय ओन थॉट्स. समहाउ वो देखकर मुझे लगता है कि यार इतना बड़ा आसमान है, उसमें एक छोटी सी मैं हूँ और मेरी बहुत ही छोटी सी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा एंग्शियस हो रही हूँ. इट इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव टू हैव. थैंक यू सो मच आकृति फॉर शेयरिंग दैट. प्रिया का मैसेज आया है, कहती है आई डोंट नो, मैं ना जमीन पे लेट जाती हूँ, सम हाउ इट वर्क्स फॉर मी. अब वो कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, बट इट एक्चुअली वर्क्स. एंड नितेश का मैसेज आया कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, घर छोड़ के इतनी दूर यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे ही उनसे बात करता हूँ तो बहुत ग्राउंडेड महसूस करता हूँ. एंड दिस वन एक्चुअली वर्क्स फॉर मी एज वेल. जब भी मैं बहुत एंग्शियस होती हूँ, आई कॉल माई मदर अप एंड आई टॉक टू हर, बढ़िया से फुल रैंट करती हूँ, फिर वो मुझे समझदारों वाली एडवाइस देती है. एंड देन आई रियलाइज कि अरे हाँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी भी नहीं. हम सबका अपना अपना तरीका होता है कोप करने का एंजाइटी से. सो इफ यू हैव मोर वेज टू कोप अप विद दिस, शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. हर वक्त हो गया मेरी जान का मेरी जान. मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे. नया महीना शुरू हो गया है, नया हफ्ता आ रहा है, तो फुल एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे. मे दिस मे बी विद अस, है ना. हाँ जी, अपना ख्याल रखिएगा. कोई भी बात हो शेयर करने के लिए तो 3311063 पर मैसेज कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू हैवंट, फटाफट से जाइए radioolive.qs इज दी हैंडल. फॉलो कीजिए हमारे सोशल्स को. वी कीप पोस्टिंग फन वीडियोज ओवर देयर. और अभी एक बहुत कमाल की चीज़ हम कर रहे हैं, यू नो, डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑफिस में जाकर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा री एनर्जाइज और रिफ्रेश कर रहे हैं. उनके साथ गेम्स खेलते हैं, उसकी भी कुछ वीडियोज़ हैं वहाँ पर, चेकआउट कीजिएगा. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट कि हम आपके ऑफिस आए तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर. सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है.
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
2: ये गाना.

0: रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.

लो जी, एक बार फिर से वीकेंड खत्म हो चुका है और वीकडे चालू हो चुका है, लेकिन आपका अगर सैटरडे छुट्टी थी तो इग्नोर। कैसा रहा आपका वीकेंड, मतलब फ्राइडे वाला दिन और थर्सडे की नाइट, क्योंकि थर्सडे नाइट भी वीकेंड जो है वो काउंट होता है। मेरा कैसा रहा मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी, लेकिन आप बताइए पहले मुझे आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। वापस लौट रही हूँ जाना कितनी है, 4 घंटे में भी अपने ही है।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
5: Radio Olive. Number 1.
4: You are listening to me on Radio Olive. Gio Binda.
5: Radio Olive. I'm number one.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस। वी कंप्लीट

0: हां जी मैं गया जी सोनियो के दादी की हालचाल खाना वाना खाया और फिल्म्स वगैरह देखी, तो मेरा थर्सडे जो था वैसे ही जो था वो निपट गया। और मैं मतलब जब सोई हूँ तो कितने ऑलमोस्ट चार साढ़े चार जो थे वो बज गए थे, तो मैं सोई और उसके बाद मेरी जो नींद थी वो कितने बजे 2:30 बजे दोपहर के 1:30 बजे जो मेरी नींद जो थी वो खुली। और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, मेरा ब्रेकफास्ट उसको क्या बोलेंगे आप मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट मैंने 3 बजे के अराउंड किया, तो ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मुझे मेरा जाने का कहीं मन नहीं था, लेकिन एक जगह पे अर्जेंट जो था वो जाना था, लेकिन मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरा पोपट हुआ, ठीक है। सो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच खाच के 4:30 बजे तक नहा के रेडी हुई, और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी वो प्लान जो था वो कैंसिल हो गया। अब मैं रेडी होके बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। छुट्टी, एक दिन की छुट्टी मुझे चाहिए अपने आप को पूरा रीस्टार्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने चेंज किया और नहा के जो नींद आती है उसके बाद, ओ माय गॉड, फिर मैं रात के 8:30 जो है वो उठी हूँ। फिर उसके बाद मेरे को ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी, फिर खाना वाना ऑर्डर किया, खाना खाया, फिर उसके रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पूरा दिन सो रही थी। सो या फिर उसके बाद मैं 6 बजे उठ गई, क्योंकि सैटरडे थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जो है वो मेरे को उठना होता है। सो ऐसा रहा मेरा वीकेंड। और मैंने कुछ कुछ बीच में सीरीज़ वगैरह देखी, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर दी, जिसका मुझे बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा खर्चा कर दिया था, बट दैट्स ओके। सो या ऐसा मेरा वीकेंड रहा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट.

ऐसा है या नहीं है? आई डोंट थिंक सो. सिमरन कौर है आपके साथ. सो म्यूजिक के साथ साथ ये स्टडी जो है वो क्या कह रही है? स्टडी कह रही है, क्योंकि ये स्टडी मैंने काफी जगह सोशल मीडिया पे जो है वो फ्लोट होती हुई देखी है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि 33 की एज के बाद जो है वो आप पॉप म्यूजिक जो है वो इंजॉय करना बंद कर देते हो. और इस टेस्ट को, इस ट्रेंड को पता क्या बोलते हैं? टेस्ट फ्रीज. आपका टेस्ट फ्रीज जो है वो हो जाता है कि 33 की उम्र के बाद आपको पॉप म्यूजिक जो है वो अच्छा नहीं लगता है. आई डोंट थिंक सो. सबका अपना अपना टेस्ट होता है यार म्यूजिक का, और एक सर्टेन एज को क्रॉस करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वैसा म्यूजिक पसंद नहीं आता है. बट मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनका टेस्ट फ्रीज वाला सीन जो है वो हो जाता होगा. सिमरन कौर आपके साथ, मैं जियो बिंदास. मुझे एक सी समझ लगती है, पापा जब वो गाने सुनते थे ना कि तुम पुकार लो, अरे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. भाई साहब, अब जाके वो गाने हमको समझ लग रहे हैं. अब हम भी नुसरत फतेह अली खान साहब सुन रहे हैं, अब हमको म्यूजिक की कदर जो है वो फील हुई है. अभी पापा की एज में आए नहीं है, लेकिन फीलिंग है सेम है यार. क्या कहते हो?

0: Radio Olive, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

थर्सडे की बात है, अराउंड 2:30-3 बजे यार जब मैं बाहर निकली तो रात के टाइम पे मौसम इतना ज्यादा प्यारा था, इतनी प्यारी प्यारी हवा जो थी वो चल रही थी। सो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दिन में तो फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस था, 34 जब टेम्परेचर था, और मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी 19% है। सो यार ये है मौसम के हाल, और दिल के हाल भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं 3311063 पर, 9 बजे तक जब भी आपका मन करे, जब भी वेंट आउट करने का मन करे। और अगर आपको लगे कि ये बात सिमरन किसी को बतानी नहीं है तो आपके और मेरे बीच में रहेगी, डोंट वरी, मैं आपको सलाह दे सकती हूँ यार।

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

0: 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Namaskar, I am R. Madhavan.
4: Hi, this is Bipasha Basu.
5: Hi, I am Rajkumar Rao.
6: Hi, I am Priyanka Chopra.
7: Hi, this is Disha Pardi.
3: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3 FM.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
9: सिमरन के साथ
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
11: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
12: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

0: पानी पी लो यार, कब से नहीं पिया, ऐसे रिमाइंडर दे रही हूँ यार हाइड्रेट करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको आप जो है वो डोप वर्ड उसके लिए यूज करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस टॉप इज डोप, आई हाय दिस मेकअप इज डोप। सो या नेक्स्ट टाइम आप भी इस कूल वर्ड डोप को जो है वो ट्राई कर सकते हो। सिमरन कौर याव के साथ मैं गजिती हूं बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

फर्स्ट टाइम इन कतार वाटर सर्कस के लिए तैयार हो जाइए. पहली बार अपने कतर में वाटर सर्कस जो है वो चल रहा है और ये स्टार्ट हो चुका है. 31 मई तक ये वाटर सर्कस चलने वाला है हयात प्लाजा में, जहां पे सर्कस टेंट है इसका. और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यार, काफी ज्यादा कूल लग रहा है, जिसके लिए आपको जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको डांसिंग वाटर फाउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइव सर्कस एक्ट्स होंगे, बहुत सारी कॉमेडी और बहुत सारा मजेदार माहौल जो है वो पूरी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए है. मेक श्योर कि आप जो है वो टाइमिंग्स वगैरह देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इसकी अलग अलग शो की जो है वो टाइमिंग होती है. वैसे जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, बट वेरी कूल, वेरी कूल, आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए. सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with
6: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
7: Supported by Homes R Us. We come.

0: समर के टाइम पे जितने भी वाटर बेबी होते हैं ना खुश हो जाते हैं यार। क्योंकि अपने कतर में इतने सारे बीच हैं और वहां पर समर के टाइम पे जाने का लोगों को बहुत मजा आता है। सो कटारा बीच जो है वो रिसेंटली फॉर समर ओपन हो चुका है। बीच 3 और 4 जो है उसकी टाइमिंग सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक है, और बीच 5 जो है फिरीज कटारा वो शाम 4 से लेकर रात 10 बजे तक जो है वो रहता है। सो इसमें एंट्री फीस जो है वो ज्यादा नहीं है, 10 रियाली है, जो कि ऑनलाइन मैं देख पा रही हूँ। बट यस, अगर आप बीच लवर है, वाटर बेबी है, सो कटारा में तो ये बीच ओपन हो ही चुका है, लेकिन अपने पूरे कतर में बहुत सारे बीचेस हैं। आपका कोई फेवरेट वाला बीच है जहां पर आपको टाइम स्पेंड करना जो है वो पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ? आपका फेवरेट वाला बीच 3311063 पर। मैं ज्यादा ऐसा वाटर बेबी नहीं हूँ, मैं बीच लवर नहीं हूँ, बट कभी कभी मुझे जाने का मजा जो है था, दूर से पानी देखने का मजा आता है। मुझे सी लाइन बीच जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: Radio Olive Pie. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Yeah, Ghana, fresh. Fresh song of the hour. Yeah,

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

0: जब मैंने ये फोटो देखी ना, मेरी आंखें भर आई यार, कितनी क्यूट चीज है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: वायरल ये बात है।
0: ये क्या बात है यार, बड़ी क्यूट बात है। रिसेंटली मैं एक फोटो देख रही थी, एक लड़की की शादी थी और लड़की की शादी पे उसके पापा ने वो टाई पहनी, पेपर से बनी हुई टाई पहनी जो उसकी बेटी ने 5 साल की उम्र में अपने पापा के लिए बनाई थी। यार इतनी क्यूट फोटो है। मुझे लगता है ये पापा लोगों में दिक्कत है यार, ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनफैक्ट पापा हो, जितने भी ये जो मर्द लोग हैं ना, इनके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये केयर करते हैं लेकिन ये कभी बताते नहीं है। और कभी कभी जब इनके एक्शंस में वो चीज़ नजर आती है और आप सोचते हैं अरे यार सीरियसली वाले सो क्यूट, 5 साल की उम्र में जो पेपर की टाई उनकी बेटी ने बनाई थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में पहनी, यार सो स्वीट। सिमरन गौर आपके साथ, मैं कहती जियो बिंदास। एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आप ये जो मर्द लोग हो ना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। लोग वेट करते हैं यार आपके इमोशंस के बाहर निकलने का। सिमरन गौर आपके साथ, खुश हो यार।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Namaskar, main hoon R. Madhavan. Namaskar, main hoon R. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

0: एक और एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ बेबी। एडवेंचर है डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड, जो कि एक आउटडोर थीम पार्क है 900 पार्क के अंदर जो है ये बना हुआ है, जिसमें आप लाइव शोज एंजॉय कर सकते हो, परफॉर्मेंसेस, मैस्कॉट्स, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज फॉर ऑल एजेस, यानी कि फैमिली के साथ बच्चे जाएं, फ्रेंड्स जाएं, सब जाके एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर फूड कियोस्क भी है और वेंडर बूथ्स है, एकदम फेस्टिव माहौल जो है वो वहां पर बना हुआ है, एकदम फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस आपको जो है वो करने के लिए मिलेगा। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 9th of May तक ही है। सो वीकडे की टाइमिंग संडे टू वेंसडे शाम 4 से लेकर रात के 10 बजे तक, बट अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं थर्सडे टू सैटरडे शाम 4 से लेकर रात के 11 बजे तक आप इस डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड को एंजॉय कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप इसके टिकट जो है खरीद लीजिए, स्नूनू पर आपको मतलब बड़े ही आराम से ये टिकट जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि ये पूरा जो कतर है ना वो सिर्फ और सिर्फ डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, तो आपका तो जाना बनता है यार। और एक कॉन्टेस्ट जो है हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है रेडियो ऑलिव के, अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जहां पर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके इसकी फ्री एंट्री टिकट्स भी जीत सकते हो। सो सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

रिमाइंडर दे रही हूँ, आज आखिरी दिन है, मॉल ऑफ कतर चले जाइए। थर्सडे किसी दोस्त को कॉल करो, वो मॉल ऑफ कतर में है। फ्राइडे किसी को कॉल करो, वो मॉल ऑफ कतर में है, क्योंकि मॉल ऑफ कतर में अप टू 70% डिस्काउंट चल रहा है ऑलमोस्ट सारी चीजों के ऊपर। लोग पगलाए जा रहे हैं और मेरा जाने का मौका नहीं लगा आज। होपफुली आज लास्ट दिन है तो मैं जरूर जाऊंगी। मैंने सोचा चलो आप भी अगर मेरी तरह हो तो आपको एक रिमाइंडर दे देती हूं, क्योंकि कतर में जब सेल लगती है, मुझे पता है कि कोई भी कहीं पे भी सेल लगे, कोई भी ऑफर हो, पूरा कतर जो है वो वहां पे इकट्ठा हो जाता है। सो भजड़े तो ऑफकोर्स मॉल में मची हुई है। और वैसे भी अब जैसे समर आने वाला है, ऐसे टाइम पे लोग ज्यादातर अपने वीकेंड्स जो हैं, अपना फ्री टाइम जो है वो मॉल्स के अंदर ही बिताने वाले हैं, क्योंकि वही काफी क्रेजी सीन हो जाता है। आपके बच्चों के लिए भी वहां पर खेलने हुलने की जगह होती है, वो भी नहीं थकते, आप भी शॉपिंग करो, आप भी खाओ, मॉल के अंदर ही सारा जो है आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

0: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
1: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: रियलिटी चेक देते हैं आज
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बिल्कुल अकेले रहना ना मुझे कभी बॉदर नहीं करता। आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अकेले रहना जो है वो अच्छा लगता है। सबसे बुरी चीज पता है क्या जो है वो खराब लगती है, मतलब सबसे कौन सी ज्यादा चीज जो है वो बॉदर करती है, वो ये है कि जब मैं फाइनली लोगों को अपनी लाइफ में आने के लिए रेडी होती हूँ कि हाँ ठीक है यार, ठीक है इससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, एंड वो आपकी लाइफ में आगे फिर से आपकी लाइफ की बैंड बजा देते हैं। वो जो आपने एक सिक्योरिटी अपने अंदर, एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट की होती है पीस की, जिसमें आप किसी को लांगने नहीं देते हो, तो फाइनली जब वो बाउंड्री आप तोड़ते हो कि ठीक है यार कोई बात नहीं, चलो लेट्स ट्राई अगेन, उसके बाद वो इंसान आगे वापस आपकी जिंदगी में भसड़े मचा देता है। फिर एक बार की भसड़ बहुत सालों की बाउंड्री जो है फिर से बना देती है, और ऐसी बाउंड्री बना देती है कि आप किसी को अंदर आने ही नहीं देते हो अपनी लाइफ में। सो मेक श्योर कि उन इंसान से, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी की जिंदगी में जा रहे हो तो उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्यार होना चाहिए, ताकि फिर सामने वाले का डैमेज होता है ना भाई, आप इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपका पीस तहस नहस कर देते हैं, लेकिन जिनका पीस तहस नहस होता है वो सालों के लिए फिर से वैसे जीरो पे आ जाते हैं। सो यार किसी का ट्रस्ट मत तोड़िए, किसी का पीस मत खराब करिए, किसी की जिंदगी मत खराब करिए, किसी की जिंदगी के साथ इन शॉर्ट मत खेलिए। सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
2: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
0: Zabardast evening. Make you drive golden with
6: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
7: Supported by Homes R Us. We

0: पता है जब भी कतर में कोई नया इवेंट अनाउंस होता है ना, दिल को बड़ा अच्छा लगता है यार। क्योंकि हर एक नए इवेंट के साथ एक नई एक्साइटमेंट जुड़ी होती है, नए लोग जुड़े होते हैं जो कि ये ना इस इवेंट के लिए ट्रैवल करते हैं आपके कतर में। और बड़ी खुशी मिली जब मैंने इस इवेंट के बारे में पढ़ा, कतर बोट शो जिसका थर्ड एडिशन जो है वो होने वाला है 4 से लेके 7 नवंबर तक। आई नो ये थोड़ा सा दूर है, बट यस तैयारियां तो पहले से स्टार्ट है। और इस बार का स्लोगन होने वाला है क्राफ्टिंग वंडरफुल। और जस्ट सेकेंड एडिशन की बात करें, सेकेंड एडिशन में भी बहुत ज्यादा बढ़िया जो था वो सीन हुआ था, जिसमें 27,000 विजिटर्स आए थे 105 कंट्री से और 65 बोट्स एंड वाटरक्राफ्ट्स। मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया माहौल जो था वो बना था। अब एक बार फिर से जो है इसका थर्ड एडिशन जो है वो आने वाला है ओल्ड दोहा पोर्ट में। सो या कांट वेट यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

चलो जी अब आप तैयार हैं खेलने के लिए। दोस्त अब मैं लेने वाली हूँ आप सबके नाम। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोलूं तो आपको अभी के अभी अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। नो हाय नो हेलो, ये रूल है नेम गेम के। नो हाय नो हेलो नो हे सिमरन, सिर्फ आपका अपना एक लौता नाम आपने क्विकली मुझे लिख के भेजना है। चलिए अब मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। एक बार फिर से 3311063। चलिए अभी मैं नाम लेना स्टार्ट कर रही हूँ। अब्रार, सैफ, निशांत, नजीमुल्ला, अरमान, बिलाल, स्मिता, जुल्फी, अदील, खान साहब, बिसल, जेड के, थैंक यू सो मच, स्वाति जी, थैंक यू सो मच, साजिद जी, थैंक यू सो मच, हमिद भाई जी, थैंक यू सो मच, शाबाज जी, थैंक यू सो मच, राजेश जी, इरफान जी, थैंक यू सो मच, संगीता जी, थैंक यू सो मच, सिराज जी, थैंक यू सो मच, सलीम जी। दोस्त जल्दी जल्दी से सिर्फ और सिर्फ नाम लिखो, देखो हाय हेलो मत लिखो। अगर आप एक से ज़्यादा नाम बोल रहे हो ना तो एक एक करके नाम आप लिखो क्योंकि मैं मैसेज ओपन नहीं करती हूँ। शशांक जी, थैंक यू सो मच, सलीम पाशा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, राजू जी, थैंक यू सो मच, चेरी, थैंक यू सो मच, जोहेर जी, थैंक यू सो मच, रोली, थैंक यू सो मच, सूरज, थैंक यू सो मच, अनम जी, थैंक यू सो मच, किसी ने फिर से हे लिख दिया। दोस्त हे मत लिखो, नाम लिखो यार। चंदन जी, थैंक यू सो मच, मोना जी, थैंक यू सो मच, सरिता जी, थैंक यू सो मच, नावीर जी, थैंक यू सो मच, हाजिर जी, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिख सकते हो और भेज सकते हो अपना फेवरेट वाला इमोजी। जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

0: दोस्त अब सिमरन कौर के यहाँ से गली माने गड़ाई मान चुका है। सिमरन कौर आपके साथ। आई होप ये चार घंटे की एनर्जी जो आप लोगों के लिए थी आपको वो अच्छी लगी, शो अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी, गाने अच्छे लगे, वो आपके मैसेजेस के थ्रू मुझे पता लग जाता है। बट फिर भी एक बार थोड़ी सी और वैलिडेशन जो है वो चाहिए रहती है, आप लोगों का प्यार जो है वो चाहिए रहता है। आज का प्यार चार घंटे का खत्म हो चुका है, कल जो है खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी टाइम खत्म हो चुका है प्यार का, ठीक है। सो कल शाम को 5 बजे फिर से होती है जबरदस्त इवनिंग्स में मुलाकात एक नए वीक के साथ। फिर से इंतजार करेंगे वीकेंड का, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। अगले 2 घंटे जो है अब एंजॉय करिए आप मिडनाइट लाउंज। सो खाने में ऐश कर दे रो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: Radio

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.

अच्छा पता है सब्र किसे कहते हैं? जब तुम्हारा दिल फटा जा रहा हो और तुम शांत रहो, बस कुछ कहने का मन ना करे, क्या हो जाएगा कह के? नहीं, कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बस फिर उन लोगों को समझा के क्या फायदा है जो उस चीज की वैल्यू ही नहीं समझ रहे भैया। Hey, this is me, RJ आकाश, आपके दिल की आवाज। और दिल की आवाज को दिल पे हाथ रख के सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबके सामने सुना जाता है। देखो, सबके सामने आवाज नहीं आएगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरी बात की, जब दिल बोलता है ना तो सच बोलता है। और ये दिल ये कहना चाहता है कि एट दी एंड ये मैटर करता है जनाब कि तुम मुस्कुराए कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी पे, इस प्यारे से सफर की शुरुआत, मिडनाइट लाउंज, जहां फोन्स की नोटिफिकेशंस ना बजती रहे बैकग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपके दिल की नोटिफिकेशंस जो मेरे पास टेक्स्ट मैसेज बन के आती हैं इंस्टाग्राम पे, रेडियो ऑलिव के पेज पर इनबॉक्स में, जब हाय आरजे आकाश लिखा आता है तो हाय धक धक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्या लिखा होगा मेरे प्रेमी ने, हाय बड़ा ही स्वीटी स्वीटी सा हो जाता है माहौल। लेकिन अभी तो फिलहाल ये माहौल मैं स्वीटी स्वीटी करने जा रहा हूँ। आप स्वेटी स्वेटी हो रहे हैं ना थोड़े से, क्या कह रहे हो, ठंडी भी गर्मी लगने लग जाती है जब हमसे बात होती है, हम है जी इतने हॉटी हॉटी। बट एनीवे, ज्यादा नॉटी नॉटी ना होके बढ़िया सी शाम की शुरुआत करते हैं बढ़िया सी ट्रैक के साथ। तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: से जब कोई रियलिटी शोज होते हैं ना, बिग बॉस हो गया या फिर कोई भी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो गया, दुनिया भर के शोज हैं जिनको देखकर लगता है कि रियल होंगे, नहीं? लेकिन क्या ये सच में रियल होते हैं या स्क्रिप्टेड होते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज भी, और हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा होता है। Hey, this is me, RJ Akash, Midnight Lounge में आपके दिल की आवाज, और जरूरी है इस रील वाली दुनिया से रियलिटी तक का सफर जानने की।
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: टीवी पर जब रियलिटी शो चलता है ना, तो लगता है कि सब कुछ बिल्कुल असली है, आंसू, फाइट्स, फ्रेंडशिप्स, एलिमिनेशंस, सब कुछ। पर रियल कहानी थोड़ी लेयर्ड होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फेक होती है, बट थोड़ी सी लेयर्ड होती है। शो स्क्रिप्टेड नहीं होते, लेकिन सिचुएशन जरूर डिजाइन होती है। टास्क, थीम्स, म्यूजिक, कट्स सब इमोशंस को एम्पलीफाई कर देते हैं। कॉन्टेस्ट अपनी जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स जीते हैं, पर कैमरा डिसाइड करता है कौन सी फीलिंग दिखानी है और कौन सी नहीं। इसलिए जब आप घर बैठे ये बोलते हैं ना कि ये सब फेक है, तो याद रखो जनाब, इमोशंस रियल ही होते हैं, बस उनके प्रेजेंटेशंस जो होते हैं ना, वो रील होती हैं। वो आप तक जो कटकटा के इंस्टाग्राम की रील तक पहुंचती हैं, वो सिर्फ एक रील होती है। रील वाली रियल कहानी, जहां सच जिया जाता है पर दिखाया जाता है ड्रामा के साथ। तो अभी फिलहाल एक ड्रामा मेरा भी है जनाब, बहुत देर से अच्छा गाना सुनने के अंदर से तृप्ति मिल जाएगी, बहुत तड़प हो रही है, तो इस तलब और तड़प को पूर्ण करते हैं, बढ़िया सा गाना प्ले करते हैं, इस इवनिंग को धमाकेदार बनाते हैं। हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी पे आपके दिल की आवाज, जियो बिंदास।

ना। अच्छा, बॉलीवुड का वो दौर जब स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं था, अंदाज में हुआ करता था, नहीं? और उस अंदाज को कॉपी करते हैं आज के भी जनरेशन वाले। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज मिड नाइट लाउंज में। और चलिए ले चलते हैं आपको फिल्मी फ्लैशबैक में।

एक तरफ देवानंद का चार्म, दूसरी तरफ वहीदा रहमान की खामोश अदाएं। जब दोनों स्क्रीन पर आए तो सिर्फ फिल्म नहीं बनी, हिस्ट्री लिखी गई। सवाल इसी से जुड़ा है जनाब। तो आज के फिल्मी फ्लैशबैक का सवाल आपसे ये है, सिंपल सॉर्टेड और ऐसा जो आप एक बार में बताएंगे देवानंद और वहीदा रहमान की एवरग्रीन जोड़ी कौन सी फिल्म में इमोर्टल हुई। सोचिए, यादों के रील्स रिवाइंड कीजिए, जवाब जल्दी से दीजिए ताकि मैं थोड़ी देर में बता सकूं कि कौन है जिसने सबसे पहले सही जवाब गेस किया है। और आपके सजेशन पे आपको कौन सा गाना पसंद है अपने नाम के साथ लिख के भेज दीजिएगा। बस आपका नाम आ ही जाएगा यार, आपके नाम की नोटिफिकेशन आती है ना जब मेरे इंस्टा के अकाउंट पर, तो कितना अच्छा लगता है पता है। इतना आगे दिल और ऐड कर दूं इसलिए मैं नीचे कमेंट में दिल दे ही देता हूं। आप बस मुझे सामने से फटाफट मैसेज करके बताओ कि देवानंद जी और वहीदा रहमान की एवरग्रीन जोड़ी कौन से फिल्म में इमोर्टल हुई थी। तो जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके नाम के साथ बढ़िया सा गाना आपको डेडिकेट करूंगा कुछ ही देर में। जियो बिंदास।

पुरानी फिल्मों का जादू ही अलग था, नहीं? वो आंखों का जादू, वो चलती हवा जैसा रोमांस, और जहां प्यार शोर नहीं करता था, बस महसूस किया जाता था। हाय।

Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में और फिल्मी फ्लैशबैक के कुछ ऐसे किस्से जो ना कई बार सच में उसी नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं और कुछ ऐसे गानों की याद दिलाते हैं और कुछ ऐसी जोड़ियों की जो कि एक इंस्पिरेशनल जोड़ियां जो कि एक मॉरल जोड़ियां बन जाती है नहीं और टारगेट जोड़ियां भी कि ऐसा ही बनना है अपने को। देवानंद और वहीदा रहमान की वो जोड़ी जिसने सिनेमा को सिर्फ देखा नहीं जिया गया, मतलब वो फिल्म थी गाइड। जी हाँ, सबसे पहले सबसे सही आंसर नेहा जी ने किया है, गाइड मूवी थी वो। अच्छा, आज भी जब वो गाना प्ले होता है ना, तेरे मेरे सपने या गाता रहे मेरा दिल, जहां भी प्ले होता है तो सिर्फ गाने नहीं चलते जनाब, एक पूरा दौर वापस आ जाता है और यही तो खासियत है हमारे फिल्मी फ्लैशबैक की, जहां प्यार टाइमलेस होता है। जियो बिंदास।

0: अच्छा कभी सोचा है जो आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं वो ऑफलाइन आपको कितनी थकान देती है ना? हाय
1: डिजिटल डायरी।
0: Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज। और दिल की आवाज ना आज की डिजिटल डायरी में पढ़ रही थी और पढ़ के बड़ा दुख सा लगा यार। कैलेंडर में मीटिंग है, स्क्रीन पर फेसेस हैं, पर एनर्जी कहीं और चली जाती है। कैमरा ऑन, माइक म्यूट, और बीच बीच में बस एक ही सवाल खुद से, मीटिंग चल रही है या मैं, मतलब अपने आप को कंपनी में जबरदस्ती चला रहा हूँ या फिर ये मीटिंग है जिसके वजह से मुझे यहाँ पे आकर अपनी हाजिरी देनी पड़ती है बीच बीच में। यस यस यस। वैसे ऑनलाइन मीटिंग्स ने दूरियां कम की पर थकान का फॉर्मेट बढ़ा दिया, बदल दिया। ट्रैवल की थकान नहीं, ऑफलाइन थकान जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी रहती है। डिजिटल डायरी के आज के पेपर पर लिखा था, आज के इस पन्ने पर लिखा है, काम ऑनलाइन हो सकता है पर इंसान ऑफलाइन रेस्ट पे ही रिचार्ज होता है। तो इसलिए जब भी कहीं घूमने जाने का मन करे, जब भी कहीं ऐश प्रस्ती में कहीं निकलने का मन करे, ज्यादा सोचने का नहीं, बैकपैक करने का और निकल जाने का, क्योंकि खुद को रिचार्ज करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है जनाब। तो कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? अगर आप वो लक्की बंदे हैं जो अपनी मन चाहे तरीके से साल में एक ट्रिप तो मार ही लेता है, छुट्टियां इकट्ठी करता है, तो कहाँ का ट्रिप है इस साल का? और अभी फिलहाल इस गाने के साथ जियो बिंदास।

अच्छा, जो सपने देखने की आदत होती है ना बचपन से हो जाती है, देखो नींद वाले सपने नहीं, ये खुली आंखों से वो सपने जिनको पूरा करने की तमन्ना है। सोचो जिसने दुनिया बनाई, जिसने तुम्हें बनाया, तुम उनको चुनौती देकर भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि तुम खुद को चाहते हो और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको अपनी हर एक चीज से प्यार होता है, अपने सपनों से, अपने काम से, अपनी किस्मत से। फिर आप रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, आप उसे बदलना स्टार्ट करते हो अपने हिसाब से। Hey, this is me, RJ Akash, आपकी दिल की आवाज Midnight Lounge में। और चलो शुरुआत करते हैं इस रात की एक कहानी की। छोटी सी उम्र थी पर सपने बड़े नहीं, गहरे थे। कैमरे के सामने बचपन आया और उसी बचपन ने पूरे सिनेमा को अपना बना लिया। भाषा बदली, इंडस्ट्री बदली, पर एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस। श्रीदेवी जी। श्रीदेवी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो एरा थी जहां कॉमेडी में इनोसेंस, ड्रामा में डेप्थ और साइलेंस में भी डायलॉग्स हुआ करते थे। एक रात एक कहानी, जहां छोटी सी उम्र से शुरू हुआ ये सफर पूरे सिनेमा पर आज राज बन गया। मेरे को लगता है कि अगर आपके अंदर भी एक्टिंग का जुनून है ना जनाब, या फिर किसी भी चीज का जुनून है, देखो ऑफिस में आई गेस फन थर्सडे होता होगा, या फिर अगर कोई अलग अलग कंट्री से मुझे सुन रहा है तो फन फ्राइडे, या फिर कोई ना कोई वीक में एक ऐसा डे होता होगा जिसको वीकेंड के नाम से सेलिब्रेट किया जाता होगा। और नहीं भी किया जाता ना, अपने लिए एक दिन निकालो, अपने लिए, चाहे वीक ऑफ वाले दिन निकालो, उस दिन अपनी फेवरेट चीज की वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग जगह पर डालो, उसको पोस्ट करो। क्या पता एक दिन आपका भी टैलेंट दुनिया के सामने वायरल हो जाए और तब आप अपनी जॉब से नहीं, अपने हुनर से पहचाने जाओ। बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, क्योंकि आप सुन रहे हैं हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपने कभी नोट किया कि आप बिना कुछ करे ही दिन भर में थकना स्टार्ट कर देते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि आपको आलस आ रहा है, आपको लगता है कुछ काम नहीं है इसलिए बोर हो रहे हो और आपको अंगड़ाइयाँ आनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे वाला फील होता है? नहीं, लेकिन नहीं, कई बार थकान सिर्फ बॉडी की नहीं होती, कुछ थकान दिल की भी होती है और दिमाग की भी होती है। तो चलिए बिफोर यू स्लीप थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं आपको कुछ।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज Midnight Lounge में। और दिल की आवाज आज जनाब ये कहना चाहती है, जिस इतने सारे थॉट्स एक ही चीज को ले लिए, आप इतना सोचते हो ना कि ये सोच, देखो क्या होता है ना, हमारी बॉडी दिन भर काम करती है, फिजिकली जब काम करती है ना, हम थकते हैं, सो जाते हैं और सुकून मिलता है, फिर उसके बाद वापस चाहे 10 मिनट की पावर नैप भी लेते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं क्योंकि वो फिजिकल थकान है। लेकिन जब अंदर से सिर्फ एक दिमाग ही ऐसी चीज है जो थक जाता है, आपको पता है, देखो दिल हर वक्त चल रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी चल रहा है, दिमाग भी इवन सोते सोते चल ही रहा है, लेकिन स्टिल जो टेंशन में दिमाग चलना स्टार्ट करता है वो आपको थका देता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी ही आपको समझाना चाह रही है कि भैया इतना ओवरथिंकिंग मत करो, ये ओवरथिंकिंग वाले लोगों के साथ बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, एक्सट्रोवर्ट तो बोल देते हैं ले लू के सब कुछ, और बेचारे जो एम्बिवर्ट होते हैं वो आधी आधी ओवरथिंकिंग रखते हैं और थोड़ा थोड़ा चुप हो जाते हैं और कई बार बोल देते हैं। पर मेरा मानना है कि बिंदास जियो यार, बिंदास बोलो, क्योंकि खुद को खुश रखना ना अपने हाथ में होता है जी। नहीं तो आप बिंदास जियो, हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी ट्यून इन कर ही रखा है, तो हैप्पीली बढ़िया से गानों का आनंद लो, जो मन में आया बिंदास बोल दो बस। हाँ, इस तरह से कि सामने वाले के भी दिल पे इतना ना बोझ आ जाए कि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि अब क्या करूं यार, रिश्ता रखूं कि नहीं। आ रहा हूं वापस, चलो बिंदास।

देखो यार, बड़ी प्यारी चीज कही है किसी ने, द आर्ट ऑफ बीइंग फूल इन लव। अगर आप मोहब्बत में बेवकूफ नहीं हो सकते तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। कुछ चीजों को इग्नोर करना, कुछ चीजों को चुपचाप स्माइल करके देख लेना, पता होते हुए अनजान बन जाना, यही तो मोहब्बत है। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज Midnight Lounge में। और मेरी और आपकी मोहब्बत देखो ना, अब मुझे पता है कि आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल उससे बात करना चाहता है, आपका दिल बेचैन है, लेकिन फिर भी देखो ना, मैं सब कुछ जानते हुए आपको टोकता नहीं, बस यही समझाता हूँ दोस्त, अकेला फील नहीं करना है, कभी भी अकेला फील नहीं करना है। जब भी लगे कि मन परेशान है, दिल उदास है, तो उसे हमेशा हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाना है, क्योंकि जिस जगह, जिस दिशा, जिस वे पे हम जाएंगे ना, दिल वैसा होगा। समझ के देखो मेरी बात, जब हम किसी पीसफुल जगह पे जाते हैं तो दिमाग, माइंड पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स फील कराता है। जब हम बहुत स्ट्रेस भरी कहानी भी किसी की सुनते हैं ना, तो हम खुद स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, नहीं डिप्रेस सा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जरूरी है कि एक अच्छी चीज को, एक अच्छे ऑरा को पकड़ना। तो अगर मन परेशान है तो बेझिझक इंस्टाग्राम पे, रेडियो ऑलिव का पेज है इंस्टाग्राम पे, फॉलो करके ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे और ये रिश्ता क्या कहलाता है हम बता सके, नहीं उसके बाद इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और बेधड़क अपने दिल की बात शेयर करो, क्योंकि मन में भर के नहीं जीना है मेरे दोस्त, मन

हर की जीना है ना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे साथ सुनते रहो, अपना सफर यूं ही हसीन बनाते रहो, चाहे जिंदगी का हो या गाड़ी का। बाकी मैं ही अपनी लाइब्रेरी से बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूँ ताकि आपका दिल भी कहे सुन के जियो बिंदास। गुड नाइट, बाय बाय।

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: चांदनी

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।